तेनू कोई रस्ते विच मिले, कोई तेरा मित्र, कोई यार, कोई संबंधी, तां तू हाथ जोड़ के उन्हूं कहना है नमस्ते। पर कई बारी देखी दे नमस्ते दा मतलब यह होंदा है कि अगले

क्योंकि हरनाकश अपने पुत्र प्रहलाद नु कहंदा सी तू मेरा नाम जप क्योंकि मैं परमेश्वर हां। प्रहलाद कहंदा सी नहीं तू परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ओ है जिन्ने तेनू पैदा कीते, जिन्ने तेनू शक्ति दिती है। ता हरनाकश ने प्रहलाद नु पानी विच डोबन दी कोशिश कीती, आग विच साड़न दी कोशिश कीती, फिर खड़ग हाथ विच फड़ ली, प्रहलाद नु मारे।

अजामल की ओ बैकुंठे थान, अजामल पापी सी, वेसवा दे कोल जांदा सी, वेसवा दे नाल रहन करके इन्ना ए दुष्ट हो गया कि पिता दा कहना ना मन्या, गुरु दा कहना ना मन्या, राजी दा कहना ना मन्या, अजामल पापी बन गया। पिता चल वसिया, राजे ने शहर उचू बाहर कट दिता, पर अजामल फिर भी पाप करता रहा। अजामल पापी जग जाने, सारा संसार अजामल नू जानदा कि पापी है। सात पुत्र होए

नारायण नारायण करना पुत्र नारायण नारायण परमेश्वर का नाम भी अंत वेले जमदूत आए अजामल जेड़ा सी जमदूता नु देख के ते डर गया पुत्र भुल गया ते कहन लगा नारायण बचा नारायण के मनो जमदूत अट गए देवते आए ता नामदेव जी कहंदे ने ओ अजामल पापी भी बैकुंठ नु चला गया भावे सारी उम्र पाप कीते पर एक वाली नाम

ले गई, सुके बस्तर दी थी, सेवा की थी, बेनती की थी मां पुरुषा नु के मैं बड़ी पापण, कृपा करो मेरा भी उधार होवे। ता मां पुरुषा ने कहा, ए साडे कोल तो

इंद्र देवता अपनी सभा ला के बैठे, कुछ सोच रहे है। ता लिखिया है कि इंद्र नु चिंता विच पिया देख के चंद्रमा भी कोल बैठा सी। चंद्रमा कहन लगा इंद्र

केसी कंस मथिन जिनकी है, केसी कंस मथन जिनकी है। भगत नामदेव जी बयान करते हैं, कंस कृष्ण भगवान का मामा सी पर बड़ा जुलमी सी। कंस ने अपने पिता उग्रसैन नु कैद किया होया सी, आप राज कर रहा सी और जुलम कर रहा सी। और कंस ने ही कृष्ण भगवान नु मारन दे कई यतन कीते, पर कृष्ण भगवान ने कंस नु मारिया। कंस मरिया, पापी दा नाश होया। मथुरा दे लोकां ने खुशियां मनाईया कि कृष्ण भगवान ने इस पापी तों साडा खेड़ा छुड़ाया। पर कंस मरिया, मर के मुक्त हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान दे हथों मरिया सी। इस करके कंस पापी दा भी

प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द दे विच पैरों महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आए। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इत्थे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहिब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच वो थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि एक की हो गया साढ़े नाल, असी कुछ पान आए सी, और साढ़े अपने ही पास सी, साढ़े अपने ही अंदर सी, असी उसनु पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा मान करिए। कहिंदे हन

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने, उसनु तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपनड़े घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम बुलाही। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वह परम दे विच उलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ऐ अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया है। सुते पाए बंदे नूं जो मर्जी आखी जाओ उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसमें पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनु कुछ किया जाए तो उसनु भी पता नहीं चल रहा, तो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनु भी कोई पता नहीं चलता कि क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हैं, तो फिर की सानू एक गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो जी फिर भी राम ना बैठे रहिए? वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लईयां सुन लईयां फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हो, जिंदगी उसे तरह की ही रही कि असीं अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

अनेक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदियां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे, मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या, गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां, आप सरबग हो, असी कल

गुरु नानक सच्चे पातशाह बख्शिश कर दिया न पाई, पही प्राप्त मानख दे होरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। ए प्राप्त होए हन तेनू अमोलक श्वास, ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे हैं, पले पुरशां पासों कोई चंगी गल सुन पले बन, ते जे आप बोलना चाहुंदा है ता परमेश्वर दी भगती कर, ओदा कीर्तन कर, ओदा जस कर, ताके तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा। इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक, किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए, मिज्जत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत, जिना नू ए चंगे गुण प्राप्त हन भई, उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह।

0: धागड़ी धर्म दृदांग धागड़ी धेम धरना धागड़ी धर्म दृदांग धागड़ी धेम धरना धागड़ी धर्म दृदांग धागड़ी धेम धरना
1: तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम धरना तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम धरना
0: तक तक तक तक धरी कर तक धरी कर तक त्राम
1: तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम जरना
0: संगीत भुजंग प्रयाग छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाज गाजे गागर दंग तीरंग पुकंग कड़ाकंग गागर दंग काती कटारी कड़ाकंग दिरना दिरना दिरना तद्र दानी।

एक प्रकरण चल रहा है यो 2004 विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा 400 साल प्रकाश दिवस आ रहा है उनु समर्पित छे विशेषताएं गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां पर एंड नहीं समुद्र दे किनारे कन्नां दी है कोई होर चुभी मारे होर कढे पहली विशेषताई जिन्ने अवतार धरती ते आए गए गुरु नानक गया नहीं दसवें जामे तो बाद शब्द रूप विच सदा लई धरती ते टिक गए दुनिया दे बेड़े बन्ने लाण गए ए स्टेज तो विश्वास नाल कह सकदा दास इस गुरबाणी दे सदका पता नहीं किन्ने क ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था नूं पहुंचे इस गुरबाणी दा सदका पता नहीं किन्नियां दा दसम द्वार खुलिया है गुरु नानक दसवें जामे तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप विच दुनिया दे बेड़े बन्ने लाउण लई धरती ते शब्द रूप विच सदा लई टिक गए गज के आखो सतनाम गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी रब नाल गल्लां कराउंदी गल्लां कराउंदी जरा जा महाराज दा शब्द कोई भी लैके इंज पढ़ीए ना औखी घड़ी ना देखण नहीं थानू महसूस होएगा मैं गल्लां कर रहा बाबा जी ना देखण दे

कवि कहता है सुजान चंद मैं कवि हूं, हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह, जिसने ऐलान की

छुपी किसी बादशाह का घर नहीं और वो थान है आनंदपुर साहब आपको सदनाम जिसे कलगिया वाला बादशाह है। तो मैं ये भी सुने वो कविया का बड़ा मान करके सुने उन्हें बवंजा कवि रखे हैं सुजान चंद मैं तेरा दोस्त।

गुरु नानक के कारण अपना घर समझ के आए हैं, सिखाया जिदा कोई नहीं वह गुरु नानक है।

0: इसलिए हुआ करता है,
1: पता नहीं क्यों आए, बोलना करता है, सिमरन करता है, पता नहीं कौन है, जब संगत कह दी गई पता नहीं कौन है, तो शहनशाह को मुस्कुरा पे मानो।

मेरे नूह के पेट में बड़ा दर्द, चल मेरे नाल उनको दवाई दे, फिर सुजान चल सोच दे। जे माई नाल जावां तो फिर दर्शन नहीं होने, अगे बड़ा तरस नहीं है, पता नहीं और कितना तरस ना होगा। संगत इतों लंघदियां ने, दर्शन कर जांदियां ने, तो जब वो दर्शन करके आंदियां ने उन्होंने खुशी चली नहीं जाती, उन्होंने वाल देख देख

कितना समय बाकी है कि तू जाने, पर बाकी का समा अमृत शाह के मिलने में बने के बाकी का समा आप बताएगी और अमृत कोई सजा नहीं।

जगगुरु सभा ने अमृत दा दिती सी ते अपनी सुपत्नी माता साहब कौर नूं कहा सी सहदेवा जिहड़ा अमृत छकेगा ओ मेरा पुत्र होवेगा मैं उसका पिता ते तुसी उसके माता होवो। आओ माता साहब कौर दी गोद विच बैठ कलगियां वाले पिता का प्यार।

भगत कबीर जी परमात्मा नूं मिलन दा एक बड़ा सुचज्जा ते सुंदर रस्ता दसदे ने। कहंदे ने हे भाई, जे रब नूं मिलना ते हउमै दा त्याग कर।

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे

जिन राम कहे, कोई अल्लाह आख लगे, कोई वाहेगुरु आख लगे, कोई राम राम आखी जावे, सब उस प्रभु दे नाम ने। सतगुरां ने बाणी विच उस प्रभु नूं किन्ने नामां नाल पकारिया है। रब एक है, प्रभु परमात्मा एक है, ते ए दुनिया बखरे बखरे नामां नाल पकार दी है। किस भी नाम नाल पकार लवो, बस जेड़ा भी उसका नाम लवेगा

कोई हो जाए नहीं, जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना तरिया होवे। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे हैं।

बीतया रात बीती फिर दिन आया उस मालक दी बख्शिश होई आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने अचानक बच्चे वल निगाह पई आखन लगे ओए बच्चिया इना उदास ते नाराज क्यों बैठा है प्रभु दा नाम जपया कर प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखां दूर हो जांदे ने राम राम जपया कर राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखां सारियां ही मुक जांदियां ने नारद जी इनी गल करके तुर गए ने बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच वसा लिया सिमरन विच जुड़ गया ते की सोची मिलती है किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गई किन्ने महीने बैठा रहा अज किन्ने महीनियां बाद इस दियां अखां खुलियां ते देखो नाम दियां बरकतां की तक रहा है इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए हुण ये पिंगला नहीं दे रहा अजदों इसने कुछ तकिया ऐ प्रभु तू किड्डा दयालु है तू किड्डा कृपालु है सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है अज ते तेरियां बख्शिशां अज ते तेरे कौतक अखी तक ले गए मैं गरीब तेनू की दे सकदा हां बस खाली रसना दे नाल तेरा धन्नवाद कर सकदा जदों नाम दियां बरकतां तक

जेदे पल्ले नाम है दुनिया दे सुख ओदे मगर मगर टुरे फिरदे ने। सतगुरु बाणी विच आख रहे ने लोक पर लोक दे सुख ओदे मगर टुर पैंदे ने। जेड़ा हिरदे विच नाम बसाउंदा है अज की होया राजा बिरद होया ते ए जवान होया राजे ने इस बच्चे नूं राज गद्दी ते बिठा दिता है। जेड़ी दुनिया सारी इस दे नाल नफरत कर दी सी पिंड नगरी वाले भैन भरा जेडे एडे धक्के मार दे सन अज सारे इस नूं एक बार मिलन दी खातर दरवाजे ते खलोते तरले।

राम बोलेंगी इवी बोलेगा, इनू राम राम सुखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरुषां ने दुध सकिया, हुण महापुरुषां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इस लई सदा वास्ते खुल गए। भई ये है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहे गुरु अल्लाह।

परम सरकार गुस्सा सा एक पवित्र शब्द तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का उच्चारण किया हुआ है। इस शब्द के विच साहब जी उपदेश करते हैं, जैसे एक आग दे चुल्हे दे विच लकड़ा बालिए अग बालिए लकड़ा नू हिलाइए ता अग दे छोटे छोटे चंगियाड़े उतां नू उड़दे हन। अग ते कोई है पर चंगियाड़े कितने ही उड़दे ने। जैसे एक आग दे जिस तरह एक आग तो जैसे एक आग दे कनुका कोट कोट कहंदे ने करोड़। जैसे एक आग दे कनुका कोट आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे। जिस तरह आग दे विचों अग दे चिंगियाड़े उठते ने पर फिर

सेवा बदले अपना आप गुरु दे चरणा तो वार दिता ते सास जदों कदी इंडिया जाण दा मौका बने ते सरहंद जाण फतेहगढ़ साहब जिथे साहबजादे नीयां विच चीणे गए उहदे कोल ही थोड़ी जी दूर सिख संगतां बड़ा सुंदर गुरुद्वारा बना रही हैं जिसका नाम यादगार बाबा मोती राम मेहरा रखा गया। इस इतिहास का सिख संगतां नूं देर बाद पता लगा ते हुण सिख संगतां मोती राम मेहरा की याद विच ओ गुरु घर भी बना रही हैं और उत्थे दीवान भी लगता है और याद कराता है कि जे गुरु सिखा नाल प्यार करता है ते सिख भी गुरु दे चरणा तो अपनिया जाना वार देते हैं क्योंकि गुरु ने अपने वास्ते नहीं दुनिया दे भले वास्ते जीवना सिखाया। अपने वास्ते तो हर कोई जीवता है पर किसी का भला करके जीवना असल विच ए जीवना है। गुरु का तो हुक्म भी ये है। भाई गुरुदास जी कहते ने गुरसिख कौन है? गुरसिख गुरु घर जाता है, कथा कीर्तन सुनता है, सेवा करता है, कड़ा प्रसाद लैंदा है, घर आता है ते रस्ते विच जिहड़ा मिले उहनूं कड़ा प्रसाद दिंदा है, घर दे जीवां नूं दिंदा है, पिछों बचिया आप खवांदा है, उहते प्रसाद भी वंड के खांदा है, उहते कमाई भी वंड के खांदा है। जिस वेले सिंह जंगलां विच रहिंदे सन एक मुसलमान और उसका दोस्त जसूस सन सिखा का पिछा कर रहे सन कहन लगे सुनिया कि सिख वंड के खांदे। देखिए भला सचमुच वंड के खांदे? बड़ी कीमती गल है सत्संग। वो दोनों सिख जिन्हां दा ये पिछा करदे सन दोपहर हुई एक दूसरे नूं कहन लगे लंगर का वेला है, भुख लगी लंगर छक ली। कहन लगे चलो लंगर छक लै। एक सिंह ने जेब विच हथ मारिया भुजे हुए छोले चने निकले, एक बुक चनिया दी निकली, धरती ते कपड़ा विछा के उत्ते ओ चने रख दिते और सात संगत फिर दोनों ने खलो के अरदास की थी। गुरु महाराज आपका लंगर हाजिर है, आप जी परिवार को लंगर दी अरदास करके फिर आवाज दिती भाई गुरु का लंगर हाजिर है, गुरु का लंगर तैयार है, किसने लंगर छकना है ते हाजिर हो जावे। और दोनों मुसलमान हैरान हो गए, एक बुक चनिया दी उसनू लंगर कह रहे ते फिर आवाज मारते ने किसी ने छकना है ते आ जाओ, आप की खानगे ते सानू की दें, चलो देख दे। दोनों आए ते कहन लगे सिंह जी सानू भुख लगी है, असी लंगर छकना। दोनों नू बठा के ते उन्हां सिंघां ने अद्धे अद्धे चने दोनों नूं दे दिते, अपने वास्ते कुछ ना रहा, फतेह बलाई ये कह के अगे तुर पए। अब तो लंगर मस्त पए और जकारा छड़ के अगे चल पए। वो दोनों कहन लगे वाकई तन इन्हां दा गुरु, तन गुरु दी सिख्या ते तन ए सिख। आप भुखे हन पर वंड के खा रहे। गुरसिख का फर्ज ही हुई है कीर्त कमाई करनी, नाम जपना और वंड के छकना। थोड़ी कोशिश आप भी करी ये जेड़े लंगर आप तैयार करने हैं छकना दे है, पर कोशिश करिए जिथे भी कोई भुखा दिखाई दे उसनू भी दे। कोई नंगा मिले जितना हो सके जितनी फुर्सत है
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਓ

निर्धन को पलिए निर्धन को पले निर्धन को हाय हाय निर्धन को पले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवा वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहणी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा का ना है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह दा आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंग दे हैं आज पंजवा निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने ओ भी निर्धन नू पालना है साथ संग आज पंजवा निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवा निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

0: थोड़ा कोई कह दसवंध फरूट नवा वंडा
1: एक कते
0: सुभा बन जे समझो आत्मा चढ़दी कला च
1: जा रही है
0: हुण देण ते खुशी हुंदी है शांति मिलदी है जब तक सुभा खोना खोना खोना चंचल मन बलवान एक पौड़ी है जिदा इस नक्शे नाल तलक है कहंदे ओ खालसा जिदी आत्मा बलवान है जिनूं हुण देण ते खुशी हुंदी किसे नूं पालण ते खुशी हुंदी है

any number. A sattva surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी और कड़ी मंग नानक को ब्रह्म माया कर सच देवो क्योंकि सच सदा रहने वाली है दूर दिखुटे नानका दूर में हो गया पूरे पदार्थ पहले भी नहीं रहे तो इस वास्ते हम पूर्ण निपुटे नाम का औरंग सच और सिर्फ दी गई अर्थात पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान में दुनिया सबका हाँ जी रस्ते चंगे रस्ते थे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले हजरत फरमाते हैं सच्चे मार्ग चल देना उस तत् करे सच जरा सच पिया बोलते और दुध पिया जरा झूठ पिया बोलता है और जहर पिया सच बोलन जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलन जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू के अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा लगा फिर उसकी राखी करनी पैदी संभाल करनी पैर सामू जरा अम फल है वह प्राप्त इसे तरीके उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन यह वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम यह गुरु का मंत्र बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरुमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाह की टिकट दुनिया भी सफर करना आवे ता भी टिकट की जरूरत टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसी तरह उस दरगाह जाने वास्ते मालक तक पहुंचने वास्ते प्लीज सानू टिकट चाहिए एक दिन रस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धिया त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा महाराज ए धन गुरु अर्जुन देव पातशाह पहले दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुरना है महाराज पता दसो कितने वीर उसके कौ किने दुनिया सब बांबे जाना मीलों का पता
نہیں بھی پتا بھی اتنے سمے کے بعد پہنچ گئے. تھوڑے جے میلا واسطے انسان ٹکٹ بھی خریدا ہے, سیٹ بھی بک کرتا ہے, کپڑے بھی نال لے لینا ہے, جس طرح بھی رستے ٹیلیگرام بھی دے دینا ہے دوستان, میں فلان ٹرین پہ آ رہا تو اسٹیشن پہ. تھوڑے جے سب حضور کہتے ہیں کہ تو لمبے پہلے مہاراج کنے میل ہے, تو حضور فرماؤ دیتے.

मार्गते सुन है, गरीब में भी सुन है, अमीर में भी सुन है, सरदार में भी सुन है, राजे महाराजे में भी सुन है। तो कौन अपन है महाराज, तंता इतने गलते ही रह गए, कारा भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धियां ने भी साथ नहीं देना, कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर हो

जित जाए बे मेरा सतगुरु। आज दा दिन महान दिन है क्योंकि आज दे दिन दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी ते वाकई कमाल है गुरु अंगद देव जी दा महान सेवा है। गुरु नानक देव जी चरणा दे विच रह करके इन्नी सेवा कीती कि एक दिन गुरु नानक देव जी ने प्रसन्न हो करके ओ इलाही जोत जो गुरु नानक देव जी इस संसार दे विच ले करके आए सन ओ गुरु अंगद देव जी नूं दित्ती। परीक्षा भी बड़ी हुई ते हर कसौटी दे उत्ते गुरु अंगद देव जी पूरे उतरते रहे। एक दिन की छोटी जी साखी मैं आप जी सामने रखन लगे। कुछ गल्लां इस तरह हुंदियां हन कि कई बारी गुरु देखदा है मेरा सेवक किन्ना पक्का। वाकई पक्का है के कच्चा है हाले क्योंकि कसौटी दे उत्ते उसनूं तोल रहे हन। परमासी दा दीवान है। बड़ी ही संगतां गुरु महाराज गुरु नानक देव दे चरणां दे विच पिंडां दे विचों शहरां दे विचों चल करके पुजियां हन क्योंकि पूर्णमासी दा दीवान लगदा है। बड़ा इकट्ठ होया होया बरसात लगी हुई है लंगर दा कोई प्रबंध नहीं हो सकिया। संगत दे विच हुण बच्चे भी हन जो कि फुक दे मारे बिलाप कर रहे हन ते साथ संगत कई सेवादारे ने जाकर के आख्या सच्चे पातशाह अज दो दिन हो गए लंगर दा तां कोई प्रबंध नहीं हो सकिया क्योंकि बरसात इन्नी पै रही है कि लंगर दा प्रबंध किस तरह कीता जावे। बच्चे बेचारे फूके विलाप कर रहे हन ते कुछ कृपा करो आप जी ते साध संगत नाल बैठे हन गुरु नानक देव जी दे दो साहिबजादे बाबा श्री चंद जी बाबा लक्ष्मी दास। इन्हां नूं इशारा कीता सारी साध संगत बैठी हुई है कि जाओ ये जड़ा पेड़ है ना सामने इस दे उत्ते चढ़ करके हलूणा दे उस नूं हिलाओ इस दे विच्चों अनेक पदार्थ डिगणगे ते जदों ये पदार्थ डिगणगे संगत इस नूं छक करके संगतां दी तृप्ति हो जाएगी भोजन मिल जाएगा। ते साध संगत बाबा श्री चंद ने आख्या ये इस तरह भी कदे होंदा है मैं पेड़ ते चढ़ करके हलूणा देवां ते पदार्थ डिगण ये तो हो ही नहीं सकता पेट दे विच्चों किथे पदार्थ आए हन मैं नहीं चढ़ता साफ इनकार कर दिता। दूजा बचन होया बाबा लक्ष्मी दास जी दे नाल उन्हां नूं आख्या भई तुसी कृपा करो इस पेड़ दे उत्ते चढ़ करके इस नूं हिलाओ इस दे विच्चों अनेक पदार्थ डिगणगे जिस नूं छक करके संतां दी तृप्ति हो जाएगी। ते देखिया उन्होंने भी साफ इनकार कर दिता कहिंदे ये हो ही नहीं सकता कि पेड़ दे विचों पदार्थ डिगण पेड़ दे विचों लंगर मिले लोकां नूं छकण वास्ते हो सकदा उन्होंने मना कर दिता। तीजे हन सेवादार उत्ते सेवा करदे हन भाई लैणा जी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु बहुत पक्के सेवादार हन। जदों इशारा कीता भाई लैणा जी तुसी कृपा करो पेड़ दे उत्ते चढ़ करके इस नूं हलूणा दिओ ते साध सिंह सत बचन कह करके पेड़ दे उत्ते चढ़ गए। ये पूछा नहीं ये मन दे विच विचार ही नहीं किया कदे हो सकता कि पेड़ दे विचों पदार्थ डिगण ते संतां दी छक्कर के तृप्ति हो जावे ये बचन ही नहीं किया ते सत बचन आ करके पेड़ दे उत्ते चढ़ गए। हुक्म मनिए होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी ते फिर कसवटी दे उत्ते पूरे उतरे साहबजादे बैठे रहे अनेक एहो जी परीक्षा लई ते साध संगत जो देखिया कि ए सेवक पूरा है पूरा नहीं है कच्चा नहीं है ए पूरा है ते साध संगत उस वेले ही गुरु अंगद देव जी भाई लहणा जी तो अंगद बना दिता। आओ अज उन्हां महान गुरु अंगद देव जी दा
अवतार पुरब दिहाड़ा है, आप सारे मिल करके यह जो है तुक सारे मिलकर

गुरमत नाम मेरा प्राण सहाय, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड़ पाव अडेरे, जन हर हर सरदार प्यास। हर हर नाम मिले प्रगतस, मिल संगत गुण प्रयास। जन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भावहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जन हरजन सतगुर संगत पाए, तिन तौर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत्संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रयास। राग गूजरी महला पंजा, काए रे मन चितवें उद्यम।

एत सर्वर्ण पहिले दिवस पाणी पावक तने किया पंकज मोपग्नि जल हम देखा तैं डूबी अले मन एक न चेत समूढ़ माना

सकारत सी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रुन को पलनु बद कियो घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछानत चीटी दे कुंजर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जाव उद कर करा करतारा प्रजा धरता तर दे अपारा जाव आ कर कर दो कबू तुम्हें मिलत दे तर सबू जेते बदन से सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिला अनाद अस

उपारो हमरे सा बैरियन सुंगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहोर करो कविता वेद नाना कृष्ण जता माता चरित्र उचारो चूक होए कबले ओ सुधारो कबवा चा दोहरा जो निज प्रभु सोंगा सो कहो जगमाए जो ते प्रभु को त्याए है अंत सुर को जाए दोहरा हर हरजन दोए एक है देव विचार कशनाए जल से उपज तरंग ज्यो जल ही बिकै समाए दोहरा जब आए स प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब कह सुनाए कवाच दोहरा ठाठ भयो मैं जोर कर वचन का सिरने आए पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण पुराण अनेक है मत एक न माने सिमृत शास्त्र वेद सब वो भेद कहे हम एक न जाने श्री स्पान कृपा तुम रही कर मैं न कहो सब तो बखाने हूँ।

बावली जिथे तू समर्थ जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माए सुन के जम के तू नाए तेरे छट जाए भौजल विकम सगाओ गुर शब्दी पार पाए जिन कौल की प्यास अमृत से खाए कल में ओ पुन गुण गोविंद गाए सब सैनो कृपाल संभाले साहे जिसका कोई न जाए जे आवे तत आए श्लोक महला पंजा अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ जितरी सदगुर पे खाना श्रवणी सुनना गुरनाओ सतगुर सेती रत्या

जेड़ दा महीना तत्ता तुप तत्ती रेत तत्ती मुगल सरकार तत्ती पर ठंडे कौन हन शांति दे पुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोमे गुरबाणी दे बोहित गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। किसे कवि ने ठीक ही किया है, इना अखा ने कई पतंगियां नू उंज ता लाटां ते सड़दियां देखिया है, मैं कई वेर चुप किते गुंचियां नू देगा विच भी कढ़दियां देखिया है, तत्ती रेत ते कई नमाजियां नू मैं कलमा यारदा पढ़दियां देखिया है, पर मैं की दसा अर्जन देव ताई किदा अग उते सड़दियां देखिया है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहण वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रहा सी, जदों उस नू किसे ने जाके दसिया ओए फकरा जाके अपने यार दी हालत ना देख, ता इस सुन के साईं मियां मीर दौड़िया आया, आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे हुए हन, सारा शरीर छले छले होया पया है, पर मस्तक डलका मारिया है ते मुखों की कह रहे हन, तेरा किया मीठा लागे। ए सब कुछ देख के साई मियां मीर ने गुरु साहब नु सवाल कीता। मियां मीर ने पुछया सतगुरां नु, तवी तपदी वांग तंदूर दाता ओ तन भर दिता सारा शालिया ने, जिवें वेल ते गुच्छे अंगूर दाता, कोमल कलियां तो कूला रेशमा तो जिसम ढलके होया मनूर दाता, और कल तख्त उत्ते ते अज तवी उत्ते एक ही खेल रचाए रब्बी नूर दाता, ते नाल ही हाथ जोड़ के बेंती कीती, महाराज मेरे कोलों तसीहे जरे नहीं जांदे, मेनू हुक्म दियो मैं अज ही लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देंगा। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछया, साई जी ए शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां? तां जवाब मिलिया, जी हजूर कोलों। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, इन्हां शक्तियां नूं असीं वी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है। साढ़े दो निशाने सन, असीं इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनियां सन। अगों हस के सतगुरु कह लगे, तू फकरा रमज पछाणी नहीं, मैं तेरे दिल दी जान लई, तू मेरे दिल दी जानी नहीं, मैं रखनिया है सन दो नीहा, एक शहीदी दी एक हरमंदर दी, ओ तू रखती ए मैं रखूं, ए चाह है मेरे अंदर दी।